अक्सर ने पहले ना सुना होगा। कुछ नए गीत, कुछ काम की और कुछ मजेदार बातें और कुछ शायरी। चंद जरूरी ऐलानात भी होंगे, मगर आगाज आज भी एक अच्छी बात से। सड़कों में चौराहे होते हैं, यानी ऐसे मकामात जहां मशरक से मगरिब जाने वाली सड़क पर उन मुसाफिरों के लिए रास्ता जो शुमाल से जुनूब या जुनूब से शुमाल जा रहे हों। ट्रैफिक कानून के तहत ये कायदा मुकर्रर किया गया है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक तरफ की सड़क बंद करके दूसरी तरफ की सड़क खोल दी जाती है। इस मकसद के लिए अलामती तौर पर हरा सिग्नल और लाल सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। एक गाड़ी चलते चलते चौराहे पर पहुंचती है और देखती है कि उसके सामने लाल सिग्नल रोशन हो गया है, तो वो वहीं रुक जाती है ताकि दूसरी सड़क से चलने वाली सवारियों को गुजरने का मौका दे दे। जब दूसरी सड़क की सवारियां निकल जाती हैं तो लाल सिग्नल की जगह हरा सिग्नल रोशन हो जाता है। अब आपकी सवारी के लिए मौका होता है कि वो चौराहे को पार करके आगे बढ़े और अपना सफर जारी रखे। चौराहे का ये कानून जिंदगी का कानून भी है। जिंदगी की सड़क कोई खाली सड़क नहीं जिस पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिर्फ अपनी गाड़ी दौड़ाते रहें। यहाँ दूसरे भी बहुत से लोग हैं और वो भी अपना अपना सफर तय करना चाहते हैं। जरूरी है कि हर एक अपने अंदर ये वसत और लचक पैदा करे कि वो यहाँ खुद रास्ता लेने के साथ दूसरों को भी रास्ता दे। जो लोग अपने अंदर ये हिकमत पैदा ना करें, उनका अंजाम वही होगा जो ऐसे चौराहे का जहाँ कोई सवार अपनी सवारी को ना रोके, हर एक बस अंधाधुंध अपनी सवारी दौड़ाता रहे। याद रखिए, जिंदगी की शाहरा पर आप ही अकेले नहीं हैं, यहाँ बहुत से दूसरे चलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी की शाहरा पर आगे बढ़ें, तो आपको दूसरों के लिए भी गुजरने का मौका देना होगा। सड़क के किसी हिस्से पर अगर आप गाड़ी को दौड़ाने का मौका पा रहे हैं, तो सड़क के किसी दूसरे हिस्से पर आपको अपनी गाड़ी रोकनी भी होगी ताकि दूसरी सवारियां टकराए बगैर गुजरने का मौका पा सकें। अपना हक लेने के लिए दूसरों का हक देना पड़ता है। अगर आप चाहें कि दूसरों को उनका हक दिए बगैर अपना हक पा लें, तो मौजूदा दुनिया में ऐसा होना मुमकिन नहीं। इस अच्छी बात के बाद एक अहम और जरूरी ऐलान महकमे सेहत हांगकांग की जानिब से। इस मौसम में होशियार रहें, फ्लू, कोविड-19 और दीगर सांस की बीमारियां अब भी मौजूद हैं। अपनी जाती और माहौल की सफाई का खास ख्याल रखें। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू से मुंह और नाक ढांपें। माय साबुन और पानी से कम अज़ कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। तबीयत खराब हो तो फौरन मास्क पहने और डॉक्टर से मशवरा लें। हुकूमत का सन 2025-26 का सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी उतना बेहतर। अहले अफराद मुफ्त या सब्सिडी शुदा फ्लू शॉट हासिल कर सकते हैं। अगरचे कोविड-19 की मकामी सरगर्मी कम सतह पर है, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप, रेजिडेंशियल केयर होम्स के रिहायशी, 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के वो अफराद जिन्हें दायमी बीमारियां हैं, 6 माह या उससे ज्यादा उम्र के वो लोग जिनका मुदाफती निजाम कमजोर है, और हमला खवातीन को वक्त पर बूस्टर वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट देखिए, जिसका पता है www.chp.gov.hk।

0: बात हो जाए।
1: सिंधी नगमा आपने सुना ताहिर मिट्टू की आवाज में। सामईन, आज 5 जुलाई है, इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं आज से ठीक 49 साल कब्ल रेडियो पाकिस्तान का सुबह का तारीखी न्यूज बुलेटिन। पाकिस्तान की तारीख का ये एक अहम मोड़ था, सुनिए ये खबरें।
2: आज मंगल है, रजब की 17 और जुलाई की 5 तारीख, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप नाहिदा बशीर से खबरें सुनिए। वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा है कि वफाकी वजीर मिस्टर अब्दुल नफीस पीरजादा और PNA के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर गफूर अहमद के दरमियान आज सुबह मुलाकात का इम्कान है और मुजाकिराती कमेटी का इजलास आज 30 से पहर किसी वक्त हो सकता है। मिस्टर पीरजादा इस मकसद के लिए आज सुबह प्रोफेसर गफूर अहमद से राब्ता कायम करेंगे। रात रावलपिंडी में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आला तरीन कौमी मफादात की खातिर मैंने काबीना के इजलास में अपने साथियों को इस बात पर आमादा कर लिया कि अगर PNA बाज निकात उठाना चाहता है तब भी बातचीत जारी रखी जानी चाहिए। जनाब भुट्टो ने ऐलान किया कि अगर PNA उस समझौते पर दस्तखत करने पर तैयार है जो उसकी मुजाकिराती कमेटी ने इस महीने की 2 तारीख को तय किया था तो मैं आज सुबह ही इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर PNA बाज निकात उठाना चाहता है तो हमें भी हक हासिल है कि हम भी उतने ही निकात पेश कर दें क्योंकि हम बड़ी रियायतें दे चुके हैं। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे मुल्क का इंतजाम संभाल लिया है। फौज के एक तर्जुमान ने बताया है कि PPP के तमाम लीडर, जिनमें वजीर आजम भुट्टो भी शामिल हैं, और PNA के लीडर हिफाजती हिरासत में ले लिए गए हैं। खबरें खत्म हुईं।
1: सामिन, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हमने जिक्र किया था, आज हम आपके लिए लाए हैं मेहदी हसन की आवाज में एक ऐसा गीत जो तकरीबन 50 साल पहले बहुत मकबूल था। जिस फिल्म यानी आजा कहीं दूर चलें के लिए इसे रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म मुकम्मल ना हो सकी और यूं ये नगमा भी गुम हो गया। इसे लिखा था इम्तियाज आबिद ने और इसकी धुन ए गफूर ने बनाई थी। ये नगमा हमें बहुत खस्ता हालत में मिला था, इसे हमने अपने तौर पर बेहतर करने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

0: था, लेकिन रिश्ते में मेरा नवासा था। अब चूंकि मैं अपने भाई का नाना था, इसलिए मैं अपना भी नाना हो गया हूँ।
1: जी अच्छा अच्छा, अपना नाना।
0: आप उस शख्स की जज्बाती कैफियत को समझने की कोशिश करें डॉक्टर साहब, जो खुद अपना नाना हो।
1: ओ हाँ जी जी, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ।
0: और जब मेरी बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो वो पैदा होती मेरी माँ का भाई यानी मेरा मामू हो गया और मेरे वालिद का साला, हालांकि वो था उनका पोता। मगर चूंकि मेरे वालिद की बीवी रिश्ते में मेरी बेटी थी और मैं रिश्ते में उसका बेटा था, तो मैं रिश्ते में अपने बेटे का परनाना बन गया।
1: ए बेटे का परनाना?
0: जी यही नहीं, मेरे वालिद का नौमौलूद बेटा चूंकि मेरा भाई है, वो मेरे बेटे का चाचा बन गया। लेकिन मेरा बेटा चूंकि मेरे वालिद की बीवी का भाई है, इसलिए वो मेरे भाई का मामू बन गया। अब चूंकि मेरा बेटा मेरे भाई का मामू है, वो रिश्ते में मेरा भी मामू हुआ।
1: ए मेरा भाई चाचा, मामू भाई का मामू, पोता साला। ए भाई बस कर, खुदा के लिए बस कर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ए भाई बस कर, तू क्या लेगा यहाँ से जाने का?
0: डॉक्टर साहब मेरी बात तो पूरी सुन ले, अरे अभी तो हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं।
1: ए भाई ए मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे, मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे, पागल हो जाऊंगा।
0: सुनिए तो डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए,
1: मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे
0: डॉक्टर साहब प्लीज।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दिल बरकी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मनचाहे मेजबान आबिद अली बेग के साथ।

लिए देखिए आरटीएच के रेडियो 3 की वेबसाइट। अगर आप अपना ये प्रोग्राम चलते फिरते स्मार्टफोन पर सुनना पसंद करें तो डाउनलोड कीजिए आरटीएच के ऑन द गो या आरटीएच के माइंड नामी एप्स। अपने मेजबान आबिद अली बेग को इजाजत दीजिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। शब्बा खैर और अल्लाह हाफिज़।